0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून सब साहब सुनखानी शिवसारा सुबह में की नारी कर चली भारी विपत्ति ले पति से जाऊ बिन्नति कर चिंता पिदर ले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर मन कन कहीं ज्योति समा देवी के ही सौगर मन देव चंगा कर मिलन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगमग करने मन चित हरने।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: मेरो नाम अरुणम आठ लादुक
1: मेरो नाम नारायण कुमारी खत्री म वार्ड नम्बर आठ मल्दुङबाट आएको
2: नाम पम्फा ओली लादु गाविस वार्ड नम्बर आठ मल्दुङ
3: लादु गाविस वार्ड नम्बर आठ मेरो नाम चाहिँ मनमाया ओली
4: नमस्कार मेरो नाम चाहिँ राधिका ओली लादु आठ मल्दुङ
5: मेरो नमस्कार मेरो नाम लक्ष्मी ओली वार्ड नम्बर आठ मल्दुङ
6: नमस्कार रीता
7: कार्की
6: हो नाम मेरो
7: लादु गाविस नमस्कार मेरो नाम रमा कार्की लादु गाविस वार्ड नम्बर आठ

छैन आउने जाने पाइन खबर पनि माइती छेउ के घर माइती छेउ के घर भयो धेरै दिन भगा छैन किन माइती छेउ के घर।

गटा लाई रो पीड़ा लु लाई गाई रो पन के लाई गोबारा अब खाने काचा यो बने कसाचा बन के लाई गोबारा बैराकी चेली जाता गए पानी छाइना खोजी खबारा

0: आशर्मा रूपनी बालाई पुला छोपने लाई मरा चरेबा पहलो दाई कर कली गाबा नराई बाशा बाबा लाई मरा चरेबा पहलो दाई आई लोग बाशा लाई मरी ना बाने आगो माउला गोइले माई
1: कठाई बारी
0: लाई आज राम मैले गीतै भन्न आए।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक फिर बहने भी थोपलो साथ में गायल बाटो मुंबई प्रसाद साहब कोटा आज विक्रम संबत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 16 तारीख आषाढ़ 32 गते बीवार द्वितीय तिथि आज गुरु बृहस्पति पश्चिम में अस्तय होने अब श्रावण 24 गते पूर्व में उदय हुन्छ अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षेण कल्पे भरी

सरीछयन राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन सम

दशा सहिता वायु सरी हुन गया हनुमन्त सहिता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड़थ्या ती आकाशमा सीताजी कन फेटी फर्की कन फेर रामचंद्र का पासमा।

यो ची सब ठीक पारी मन ले लगे अयोध्यातिर देखे श्री अमरावती सारी पूरी आनंद बोहर हर सारा लश्कर लिपसे नगरमा चलते बड़ा सोरली